अपने भाणे लै समाए तुम ते भिन्न नहीं किछो आपन सूता सब जगत परवाए जहां को ब्रभ जीव आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तात का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता।

अष्ट परि पूरे गुर का सुन उपदेश पार निकट कर पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चेंदा संत त्याग उतरंग संजना की धूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो सा संग गण सागर तरवार तन के पर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक नवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवा नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम श्लोक साध के भजन अमली कलाले रतना सुनत कमावत ते उधार आप तरे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागार रंग जय शब्द अनाद बाजे सुन सुन अंत करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महाद के माथे नानक उदरे तिन का साथे सरन जोग सुन सरणी आए।

रहते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक ने वेखे पमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीता सावधान एकाग्र चीता सुखमणि सहज गोबिंद गुण राम जिस मन बसे सोत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरखा प्रगट सब लोहे सब ती उच पाए स्थान बरना होवे आवन जान अर्तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए

सगलती उदास सुंदर चतुरं तात का बेता सुमदर सिंह एक दृष्टेता हे फल दिस जन कै मुख भणे गुरु नानक नाम बचन मन सुनै इहो निदान जपे मन कोए सब जुग मैं तां की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखानी सगल।

नहीं जाहों करी ना होई, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई, लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहिया तू सच्चा साहेब, सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहिया।

जेते बदन सिर सब तारे आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेवना पावत भेदा ताको कृपा हन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद ना जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नैभिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती तुमरा लखाना जाहे पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुम स्वरूपा रंग पयो राम कही पुप्पा अंडा जेर से थज कीनी उत्पज खान बहो रच दीनी कहूं फूल राजा हब बैठा कहूं सिमट पयो संक्र इकट्ठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अवृक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करो रण गाता जे अस्तुजता विशरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न आह रक्षा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाहे ने हर हो ताके ताब तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शब सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारों कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहु उबारी सर्व ठावर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब राता केलबिक सगल दे को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तुजप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला मन बांझत बल पावे सोई दुखना तसे व्यापत कोई अड़ल सुने गुंग जो याहे सुरसना पावई सुने मूढ़ चितलाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकटना दिन नर के रहा है और जो याकी एक बार चौपाई को कह है चौपाई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस मुन तीन कहिज भादर सुधी अष्टमी रवारा तीर्थ सतर्व ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखयाने त्रया चित्रे मंत्री पूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापतम सत शुभम सत अभजू दोहरा दास जानगर दास पर कि जय कृपाया पार आभा दे राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपाई मैना ग्रेश प्रथम नाऊ किशन बिशन गबू न त्याऊ

जय भरत भरिया चुन चुन सतरु हमारे मरिया देख देख जग में दो चल राखा मह और न दलै तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अप

हमरे सब ऐरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करूं कविता बिदनाना कृष्ण कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चू कोय कब लेहो सुधारो कब बाज दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहे हौ जग माहे ज्योते प्रभु को त्याय है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है विचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आए प्रभु को पयो जन्म तराग जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सबहू कैद सुनाए कब बाज दोहरा ठाट पयो मैं जोर कार बचन कहाँ सिर न्याय पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नृत्याय हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फाल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुर की देह मोह कोटक भिषण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रूर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो ये कथा सुने अर गावे दुख पाप दे निकट न आवे विष्णु भगत की ये फल होई आद ब्याद शब सके न कोई सम्मत सत्रह सास पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल भरी लो लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तार सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुवर रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साद असाद जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहुभेद गहे हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे

आनंद भया मेरी माए, सात गुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मानव जिया वाधाइया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आइया, शब्दोतां गावो हरी केरा, मन जिने वसाया, कहे नानक आनंद होवा, सात गुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यो मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब कुछ है, जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द घनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, करसांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो, जिस दिया ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द घर सभागा, घर सभागा शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटुक मारिया, तुर गर्म पाया तुद जिन काओ, से नाम हर के लागे, कहे नानक तै सुख होवा, तितकर अनहद वाजे, अनद सुनो बट भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहे भरपूरे, बिनवंत नान गुर चरण लागे, वाजे अनहत तूरे, मुदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पयो, ससंतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब आधारो, जेको खावे जेको पुंचै, जिसका हुए उधारो, ए वस्त जी नह जाई, नित नित राघुर धारो, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म बसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा किता जातो नाही, मैनो जो की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, तरस पया मेहरामत होई, सतगुरु सज्जन मिलया, नानक नाम मिलैता जीवा, तन मन थी वह हरिया पौड़ी, कथै तू समरथ जिथे कोए नाहे, उथे तेरी रख अग्नि उधर माहे, सुनकै जम के दूत नाहे, तेरा छट जाहे, भव जल बिखम सगा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तू

न साहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

इतनी सेवा प्रदान करने जी कीर्तन कर दे पुला दे माफी बख्श ना हो। भाई गुरमेल सिंह जी कैनेडा वाले आप जी कथा में जोड़ देंगे उन्होंने पासों प्यार से सकन करो जी। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज संपूर्णता दिवस।

करके सब बाणे बचन कीते साना। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार तुहाडे वास्ते कुरबान कर दिते ने। उत्थे सिखां ने बेनती कीती सी गरीब निवास सचे पातशाह अमृत बाणी दा पावन उपदेश बख्शो। ता सतगुरु महाराज साहब जी ने उस वेले जो करतारपुर साहब वाले आदि गुरु ग्रंथ साहब ने सिख

सतगुर सिखण को सुख करनी, पाठ कर दे बिकारन हरनी, हरनी तिसना सिंगण भरनी, बरनी गौर दुख तर को करनी, करनी अगन ज्ञान की अरनी, जो सिख गुरबाणी भय कर, जो सिख गुरबाणी भय कर, बिन प्रयास पै सागर तर, गुरबाणी महिमा महियाने, जे मर जाद हमने ठाने, तो सिख पै ना करे गो कोई, बिन पै करे सिरे ना होई, गुरबाणी को पै हम तरके, तज्यो प्रजंक सीगर ता करके, जो गुर सिख भगत है मेरा, जो सिख है गुर

मन में जिन पै बाणी अदब न धारा जानो सो सिख नहीं हमारा गुर उपदेश जाहे मन लागा कोट जन्म का सोवत जागा मन जागे की एह निशानी प्रे लागे और सतगुर बानी धन सिख जिन के उर पाई समसलता मन मीन बनाई परम सिख जिन के मन कानन विचर है नित गुर शब्द पचानन तारो भरम पिरयो नर डोल गुरबाणी तारी संग खोले एक जोत एका मिले किंबा होए महोए जित कट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तोहे लोग जाने हो गीत है यो तो ब्रह्म विचार जो कांसी उपदेश होए मन स्मृति बार कोई गावे को सुने हर नामा चतलाए कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन पीना निज कर आवे गो गुरबाणी सुनदिया सुनदिया गुरसिख दे अंदर वैराग प्रेम पैदा हो जाता है। कल दा दिहाड़ा आ रहा गुरु साहब जी ने अपार कृपा की है गुरु के कीर्तनिए भी कई दिनों तुर जाना गुरु की बाणी की महिमा वास्ते शब्द पढ़ते ने महिमा बेअंत है महिमा हो नहीं सकती महिमा नहीं जाने वेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद शंकरा नहीं जाने भेव खोज तहारे देव देविया नहीं जाने माराम सब ऊपर लख पार ब्रह्म गुरु की कृपा है लड़ीवार गुरु शब्द नाल सांझ बनदी है सतगुरु जी रहमता करन आओ जिवें साहिब गुरु नानक महाराज जी दे अमृत बचन चलदे ने सांझ

ज्यों बालू की भीत गुरु की बाणी दे बोल ने राजे रैयत सिकदार कोई ना रसियो हट पटन बाजार हुक्मे ठसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब भरे भंडार रीते एक खिने ताजी रात तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख कर बार किथे से अपने दशमेश महाराज कहिंदे जोगी जाति जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्र धारी शत्र की छाया कई कोस लौ चलत हैं बड़े बड़े राजन के दापत फिरत देश बड़े बड़े कूपण के द्रप को दलत हैं मान से महीप और दलीप के से शत्र धारी बड़ो अभिमान पुंज दंड को करत हैं दारा से दली सिर दरजोदन से मान धारी भोग भोग भूम अंत पूम में मिलत है ता गरीब निवाज सचे पात।

पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कन कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो

प्रथम गहती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासी हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आय जिह जिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होवे प्रभ मेरा एह बेनंती सुन प्रभ मेरे बेनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेहरे

दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

शुभ रसना दीजै प्राणय कोर रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो हर सिंचे सुदा संजोर या रस में मगन होत कृपाते महाविखिया ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन

सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ संत मारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत ना पाई मन उहा नाम तेरे संसाय जय मां प्यान दूत जम दले तै केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम किन माए उधारी अनक पुन चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जप तो हे सुखिया लाख करोड़ी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तरे अनक माय रंग तिख नाम बुझावे हर का नाम जपत अगावे जे मार गे जद केला तय हर का नाम तय हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा तिहाइये नानक गुरमुख परम गत पाइये छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जप ते पार पराही अनक विघन जय आय संघारे हर का नाम तत्काल उधारे

जाने सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार ब्रह्म छोड़ के लागे आंसू आए नानक कहू न सीजे बिनावे पत जाए अष्टपदी दस बस तूले पाछे पावे एक बस कारण बिखोड़ गुआवे एक पी न दे दस पी हिरले तो मूड़ा को कहां करे जिस ठाकर से नाही चारा ता को कीजे सद नमस्कारम

प्रभु बने आई साध के संग न कब ऊंतावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त गोचर लहे साधु के संग आजर सहे साध के संग बसे थान उचे साधु के संग महल पहुंचे।

साध के संग सब कुल उधारे साध संग साज नमीद कुटम ने तारे साधु के संग सोतन पावे जिस तंते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सोभा सुर देवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सबल जन्म साध के संग नहीं कशकाल दर्शन पीड़ित होतने आल साध के संग कलूक धारे साध के संग नरक पर हरे साध के संग यावा सुहेला साध संग मिश्रत मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न मिर्था जावे पार ब्रह्म साध हृदवसे नान गोदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मनते बिसरे साध संग सर्प निस्तरे साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु के संग कटका डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी

ब्रह्म ज्ञानी कह मनो ए प्रगाद, जैसे धरे उपरे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सदर समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाय अमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नान जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरी ना आत्म रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर मैया, ब्रह्म ज्ञानी ते किस बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी, ब्रह्म ज्ञानी की दृश्य मृतवर सी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता ब्रह्म ज्ञानी कह होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवया ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट पागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोज जाए महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सत जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी आराध कनाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब उपराथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी

आप कृपा करे तिस दास को सब सोची परे सगुण संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हित आवे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा अर्ग तैसा शोक सदा नंद नहीं विजोग तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जुगत

पसरियो आवोय अनंत रंग लखे न जाए पार मम के रंग जैसी मध्य तैसा प्रगास पार मम करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक

भव में अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट चार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भरमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी स्रोते कई कोट आत्म ध्यान तारे कई कोट कव का विचारे कई कोट नवतर नाम त्यावे नानक करते का अंत न पावे कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट बेगातम निकोर कई कोट पर दर्व को हिरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया शरमाए कई कोट पर देश प्रमाए जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति योगी कई कोट राजेश भोगी कई कोट पंखी सर्ब उपाए कई कोट पात्र बिरख ने बजाए कई कोट पौन पानी वै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सचिर सूर नखत्र कई कोट देव दान महेंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूद धारे नानन जिस जिस भावे तिस तिस तारे कई कोट राज तम साधक कई कोट वेद प्राण सिमृत शास्त्र कई कोट की ए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की ए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग निमसाज कई कोट भूत प्रे सुकर मृगा सब ते नेरे सबू ते दूर नानक आप लित्रिया भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुर निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बो जोनी फिरे कई कोट बैठ ही खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नान सब कुछ प्रभु कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतन लागी कई कोट प्रभु को खो जानते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नान ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट काश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जूत कीनो विस्तार कई बार पस्यो पसार सदा सदा के कंकार कई कोट कीने बोपात प्रभ ते होए ब्रह्मा समार ताका अंत न जाने कोए आपे आप नान प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो आत्म प्रकाश कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमन पे सत सद ही जीवे कई कोट नाम गुंगावे आत्म रस सह समावे अपने जन को सास सास मारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे श्लोक कण कण प्रवे कह दूसर नाही कोय नानक तिस बलिहार ने जल थल मैयल सोए अष्टपदी कर्ण करावण करने जो जो तिस भावे सोई हो किनमे था बुध अपन हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तार धर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नान समय रिया समाए प्रभ पावे मनुख गत पावे

इसका बल नहीं सहात कर्ण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपराजी हो ज्योतिष पावे सोई पुनती हो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सो घर करंग हसे कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकाश प्यार कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबू नृत करे भवपात कबू सोए रह दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो द्रवाल

के संग न जावे। बोलस गर्मा अनुकूबर करे आस बलवी तिरता का हो मना सबदे आप जाने बलवंत किन में हो जाए पसमंत किसे न बधे आपंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरु प्रसाद।

उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदाव मित, संत का दुखी किसे काने मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख न सुखते डरे, संत के दुखी को नाई ठाओ, नान संत पावे ताले मिलाए, संत का दुखी अद बीज ते टूटे, संत का दुखी कते काज ना पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान भरमाई है, संत का दुखी अवजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर के अंतर दे थोथा, जिन सास बना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किशनाए, आपन बीजा पे ही खाए, संत के दुखी को अपना रखना हार, नान संत पावे ता ले उबार, संत का दुखी यों बिल लाए, ज्यो जल भी हून मछली तरफड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाव की तन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खेत माए दुवेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथिया कैद, किरत निंदका तुरी पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगे मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निरासा, संत के दुख न दृष्टे कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए पया, कीर्तन मेटे कोए नान जाने सच्चा सोए, साव कर दिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करो दिन रात, इसे त्यावो सास करा, सब के बरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को दिया, आप खेले आप करने आर, दूसर कौन कहे विचार, जिसनों कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से श्लोक, तजो स्यान सुरजनो सिमरो हरा राय, का शरण रखो नानक दू परम पौ जाए, अश्परी मानु की टेक पृथ्वी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बो न तिसना लागे आए, मारे रखे को आप, मानु के खजनाई आत, तिसका कुंभू सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघ्न लागे कोए, उस्तत मन में करन अंकार, कर्म मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पीक ठाकर का रंग, सत्संग बिन से सत्संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सर्वण हर कथा, हर दरगह नान गुजल मथा, बड़ पागी ते जन जग माए, सासदा हर के गुंगाए, राम नाम जो करे विचार, सेतन वंत कनी संसार, मंतन मुख बोले हर मुखी, सासदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुत कियो सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद आपने आप सुजे, तिसकी जानो तिसना बुझे, साध संग हर हर जिसका है, सर्व रोग त्यो अर्जन रहे, अंदन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जमकी फासा, बार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डलावे, जिस प्रभ अपना कृपा कृपा करे, सो सेव को किसते डरे, जैसा सात ऐसा दिष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तत्सबूजिया, जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सोई अस्तूर, न किस जन्मे न किस मरे, आपने चलते आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्टि, आपे आप सगल में आप, अनुग जुग दृष्ट आप्यो था, अवनाशी नाई किस खंड, धारण धार्यो ब्रह्मंड,

सदगुरु दर्शन देख मनो विकास। जो महा ध्यान में मार्ग पावे तिन साधु संग मिल जोत प्रटावे तिन संदन की बादशो तूर नानक की अर लोचा पूर मन मूरख काहे मिल लाइय पूर्व लिखे का लिखिया पाइय।

कर जाए। जस वखर को लैन तू आया, राम नाम संदन कर पाया, तज मान लियो मन मोहल, राम नाम हृदय में तो लाद के संतन संजाल, अमृत त्याग भिख्या जंजाल, तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दर कह सोए, व्यापार बिरला व्यापारे, नानक दागे सत बलियारे, चन साध के तो पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की धूर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान, सात

आज में राजयोग में जो कि तप में तभी सर्कित में होगी। त्याय त्याय भक्ता सुख पाया नानंद प्रका किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाये सगल देव हारे अब गाये पिता का जन्म के जाने भूत सगल भरोई अपने सूत मत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम।

नाम तन नमो रूप रंग नमो सुकर नाम कसंग नाम रस चंद्र ताने मन तन नमे नाम सुमने उठत बैठत सोभत नाम कौ नानक जन के सतकाम बोलो जस जे वा दिन रात प्रभु अपने जन की नीदात करे भगत आत्म के चाहे प्रभु अपने सो रह है समाय जो आओ सो जाने प्रभु अपने का हुक्म शाने।

मोह माया के संग न ले मन में रखे हर हरे एक अंधकार दीप प्रकाशे नान परम मोह दुख दाते नासे तप्त माए ठाण मृताए अंध पिया दुख नाठे पाए जन मन के मिटे देसे साधु के पूर्ण उपदेशे पाव चुका निर्भव होए बसे सगल व्याद मंते कह न से जिसका साधन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी तित पा चुके परम गमन सुन नानक हरा जन सर्वण निर्गुण आव सर्वगुण भी ओहि सकला धार जन सगली मोही

श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिकिया सगले चार हरन नाम कमावना नानके उतान सार अश्वरी।

रचाओ मंत्र अंतरे स्वाओ नेत्रोपेक दर्शको हे मन विकसे सा चंतो हे भक्त जना के मंत्र रंग बिरला को उपावे संग एक बार दीजे कर मैं गुरु प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कही न जाए नानक रेया सर्व समाये।

सा संत जना का पेखन साहब ब्रह्म। संत जना के हृदय साहब धारण संत जना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जन जाता दसकी रह सत बचन साधु सब कह जो जो हे सोई सुखमाने कर्ण करावन हार प्रजाने अंतर वसे बार भी हो ही नानक दर्शन देख सम हो आप सत की असत सत दिस प्रभ दे सगली उत्पाद दिस भावे ता करे विस्तार दिस भावे ता एक अंकार अनक कला रखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिजन आप बजाए सर्वभूत आवरतारा सर्व नयन आप पेखनारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आपन जाने खेल मनाया आज्ञाकारी कीनी माया सबके मद लिप्त हो रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे आ गया आवे आ गया जाए नान जा पावे तले समाए ते सुनाई बुरा रे कहो किने किस कराया पला कर दूता निकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोत आप संग्राज ताकी गत मत कहीं न जाए दूसर होए तो सो जी पाए जिसका किया सब प्रभान गुर प्रसाद नानक जान जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रसोए हो धनवंत कुलवंत पदवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सा जगत राया जन आवन का ए सुभाव जन के संग जावे ना हो आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रवे आराध्या पूरा जाका ना हो नानक पूरा पाया पूरे के गंगा हो अष्टपदी पूरे गुरु का सुनो उपदेश पार मम निकट कर भेख साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंदर की उतरे चिंद आस नित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साह सगन सागर तरो तो

ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन न जाने मन कोए, मन न सुरत होए मन बुद्ध, मन न सगल पवन के स्वद, मन न मोचुटा न खाए, मन न जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, मन न मार्ग ठाक न पाए, मन न पशु प्रगट जाए, मन न मग न चल पंथ, मन न धर्म सति संबंध।

ना पेख। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगह मान।

परिये हाथ पैर तंदे पानी धोता तो उतरस खे मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिया ओहो धोए तो परिये मर पापा कै संग ओहो धोपै तो नावे कै रंग।

कवण सरते महाकवण जतो आकार वेल न पाया पंडती जय हो वे लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जय लेखन ले कुराण।

रे गावे सर ब्रह्मा देवे सोन सदा सवारे गावे दासन बैठे देवत्या दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जते सते संतोखे गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखे सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोनिया मन मोहन सुरगा मच पायाले गावन रत्न पाए तेरे अर्थ तीर्थ नाले गावे जोत महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब सचा सची नाई है पी होसी जाय नासी रचना जिन रचाई रंगे रंगे पाते कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख्या किता अपना जब से दी वड्याई ज्योत पावै सोई करसे हुक्म न करना जाई सो पाठ साहो साहा पर साहेब नानक रहन रजाई।

एकामाई युक्त व्याय तिंचल परवाण एक संसारिक पंडारिक लाए दीवाण जीवित पावत।

जुगत के रंग तिनके नामा ने के अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सुहाना पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच बकाई उथे पाए नानंगे आ जाप जाए धर्म खंड काय हो धर्म ज्ञान खंड काया खो करम किते पौन पानी वै

अनंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तथ्य नाल विनोद कोड आनंद चरम खंड के बाणी रूप तथ्य कार्त कड़िया बहुत अनूप ताकि अगला कथिया न जाए जे को कह पिछे पछताए तथ्य कड़िय सुरत मत मन बुद्ध तथ्य कड़िय सुरा सदा की शुद्ध

तिथसितोषिता महमा माहे ताके रूप न कथने जाए ना हो मरे न ठाके जाए जिनके राम वस मन माहे तिथ भगत संख्या लोक रनंद सच्चा मन सोए सच खंड वस निरंकार कर कर वेख नरन्याल तिथ

जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दशमी शपे छंद त्वे प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहंजे रूप रंग रे पे को कह ना सकत कह अचल मूर्तन भव प्रकाश संतोष के जय कोट इंद्र इंद्राण शाह शहान गणिजय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रजा छंद नमस्तम काले नमस्तम कृपाले नमस्तम रूपे नमस्तम नूपे नमस्तम भेखे नमस्तम लेखे नमस्तम काये नमस्तम जाये नमस्तम गंजे नमस्तम पंजे नमस्तम नामे नमस्तम ठामे नमस्तम कर्म नमस्तम धर्म नमस्तम नाम नमस्तम धाम नमस्तम जीते नमस्तम पीते नमस्तम वाहे नमस्तम डाहे नमस्त नीले नमस्त नादे नमस्त शेदे नमस्त गादे नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त नामे नमस्त ठामे नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त उदारे नमस्त अपारे नमस्त सुके नमस्त अनेके नमस्त भूते नमस्त जुपे नमस्त कर्मे नमस्त निर्भरमे नमस्त निर्देशे नमस्त निर्भेशे नमस्त निर्नामे नमस्त निर्कामे नमस्त निर्धाते नमस्त निर्गाते नमस्त निर्दूते नमस्त भूते नमस्त लोके नमस्त शोके नमस्त निरतापे नमस्त थापे नमस्त त्रिमाने नमस्त निधाने नमस्त अगाहे नमस्त अबाहे नमस्त त्रिवर्गे नमस्त सर्गे नमस्त प्रभोगे नमस्त जोगे नमस्त रंगे नमस्त पंगे नमस्त गम्ये नमस्त सतरमे नमस्त जलाश्रे नमस्त नरासरे नमस्त जाते नमस्त पाते नमस्त मजवे नमस्त सत अजवे आदेश देशे नमस्त भेसे नमस्त नृदामे नमस्त नृवामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्त सतदेवे नमस्त भेवे नमस्त जन्मे नमस्त सुबनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व भौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्त सत दयाले नमस्त वरने नमस्त मरने नमस्त जरार नमस्त करतार नमो सर्व तंदे नमो सत बंदे नमस्त साके नमस्त निर्वाके नमस्त रहीमे नमस्त करीमे नमस्त अनंते नमस्त महानते नमस्त सत रागे नमस्त सुहागे नमो सर्व सोख नमो सर्व पोख नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व बाले चाचरी छन द्वय प्रसाद रूप है नूप है जू है भू है लेख है पेख है नाम है काम है देह है बे है जीत है पीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है सर्ग है नील है नाद है जय है जाद है जन्म है अजन्म है वर्ण है भूत है भरण है गंज है बंज है जूझ है जंज है मीक है रफीक है दंद है बंद है निर्भूज है सूज है काल है जाल है ला है जा है नंत है महंत है लीक है नृसीक है निलंब है संभ है गम है जम है भूत है शूत है लोक है शोक है कर्म है परम है

भूपे नमो शाह शाह नमो भू भूपे नमो दान दान नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्ते शनान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टिष्ट नमो तंत्र तंत्र सदा सदा सचदानंद सर्वपर्णासी नूपे रूपे समस्त निवासी

देश और नभे जाकर रूप रेखना राग जतर ततर साव साव पैन राग नाम का महीन पेग ताम न जाए सर्वमान सर्वत्र मान से मान ताहे

चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए चाचरी छंद न सदरे न मित्रे न परम न पितरे न कर्म न काये अजन्म जाये न चित्रे न मित्रे परे पवित्रे पृथ्वी से अधि से अधिर से किर से भक्ति छंद प्रसाद कत्ते के शिंदे से के बिज पेसे के गंज कर्मे के पंच परमे के बिज लोके के दस सुखे के भूत भरने के विभूत करने के राजम प्रवाह के धर्म तुझा है के शोक भरने के सर्वा भरने के जगत कृति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्म स्वरूपे के अनुभव अनुपे के आद अधेव के आप अपेवे के चित्र महीने के अधीने के रोजी रजा के रहीमे रहा के के पाक भी एवं के गह भूल गए के अभुल गुना है के शहान शाह के कारण को निंद है के रोजी दहन है के राज कर ही में के कर्म करी में के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानी है के सर्वत्र धानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीन के सर्वत्र लीन के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानिए देव प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्व कली में के परम पहिमे के अकल अलामे के साहिब कलामे के हुसन वजू है तुम मामल रजू है हमे सल सलामे सली खत्म दामे गनी मल शकिते गरीब अल परस्ते बलंदल मकाने जमीन अल जमाने तमीजल तमामे रसूल ने दाने हरी पर अजीमे रजायक जकीने अनेक अल तरंग है भेद है पंग है जी जलवाज है गनी मल खराज है नुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है परभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सब साज है समस्त सलाम है।

अनंगी नाम त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूप सर्वंगी नूप न पोत्रे न पुत्रे न सतरे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साक्षरी कै मितो अमी कै सेव प्रवाह है जय है जा है भक्ति छंद प्रसाद के साहर जोर के हाजर हजूर है मे सुलसला में समस्त रुकला में के साहिब दिमागे के उसल चरागे के कामल करीमे के राज कर हीमे के रोजी दहन है के राज कर रहन है क्रीमल कुमाल है के उसल जमाल है गनी मुल्क राज है गरीब लिवाज है री फुल सुकिन है रासल विकिन है कलंकर मनास है समस्त निवास है गंजल गनी में रजाय कर रहीम है

स्वामी अरवरगंज हर नर प्रभंज आन गण प्रणाम मुनमन सलाम हर नर खंड बर नर मंड अनुभव नास मुनमन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल तन मदाम अंश अंग असन भंग

अजांगवर्या चंद नमो सुसु जनमो चंचंद्र नमो राजराजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकार नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीज नमो राजूपे नमो परम तत्म दत्म स्वरूपे नमो जो जोगे नमो ज्ञान ज्ञान नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो जुद जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पान नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे

my own. बास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे है सो बैस बतायो सास को सुन लियो सवे जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काऊ ले पान पूछते रहे सिर काऊ ने लिंगरे लटकायो काऊ लख्यो रवाचित सावे काऊ बछाको शीस निभायो को बतान को पूछते हैं पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सभी जग

किरिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि वाच बेनती चौपाई हमरी करवा दे रक्षा पूर्ण होए चित की छातव चन मरे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुस्सवे तुम गावो आपा दे मोहे बचावो। सुखी वसे मोर परवारा से सिख सबे करदारा मोर शान कर दे करिये सब बैरन को आसंगरिये पूर्ण होए हमारी आसा दूर की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्यों जो बर जाऊं सो तुम ते पाऊं। सेव सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारिय आभा दे मुझे वरिये मन काल का त्रास नरिये जो सदा हमारे बच्चा श्री हद जो करे रचा राख लो मोहे राखण हरे साहे संत साहे प्यारे।

तगले विसूरे दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रह पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।

तन तन होसी शार जाने कोए जन पर मोह ऐसा पिया है इहदे विचों निकलिया नहीं जांदा सुख आपां बाहरों भालदे आ तां महाराज कहिंदे ने सुख ना ही रे हर भगत बिना जीत जन्म इहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिणा सुत संपत बणता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलो है मूढ़ नंग चोवा चंदन दे फूलिया सो धन धर संग रूलिया मोह मोहिया जाने दूर है कहो नानक सदा अधूर है जाते ना ही को सुखी ताके पाछे जाओ छोड़ जाए जो सगल को फिर लपटाओ दोबारा दोबारा लपटाए मान हो रहे हैं करो कृपा करना पते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रा बेनती साध संग सुभा मेरे ते कृपा कर दियो साध संगत विच मेरा वासा हो जावे इन्हां विकारां नालों मेरी सुरत टुट जावे ते जदों टुट जावेगी विकारां वालों सुरती ते शब्द नाल जुड़ेगी जदों शब्द नाल सुरत जुड़ेगी तां गरीब बनवा जी कृपा कर दे इहा रस ओह नाम दा रस आवेगा मैं मगन होत कृपा ते गुरु की कृपा द्वारे उस नाम रस विच मगन हो जावेगा जिन्हों फिर सूफी दरवेश जी ने बाबा जी बाबा फरीद साहब जी ने कहा चीजा बेशक वस्तुआ मिठिया ने पर नाम का रस इना है ही मिठा ये हुण छड्या नहीं जांदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध सबे वस्तु मिठिया रबना पुजन तुद फिर उन्होंने जन्ना ने नाम रस नू चखिया उन्हें

तहां रछे आरे आयत देग तेग फते बृद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी सिखा नो सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाहो दान प्रसादान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी सिखां दा मान नीवा मत उची मत पात दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु

पंच महरखद साख सुनावे बंगालम माध माधव गावे ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पात अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया।

हरे असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिर आहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख

असंख नावे असंख थावे अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाए।

मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वस्त आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुविला वक्त कवन कवन थित कवन बार कवन सिरुती माहो कवन जित होवा आकार वेल न पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाह।

इति सुरत न पाइया नदियां अतः वाह पवह समुद न जानिए समुद शाह सुल्तान गिरहा सिति माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसर है अंत न सिफती कहण न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण कित

अरे आदेश तसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहते जुग जुग एको वेश एक दूजी बहु लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गिड़ाया किया एक नाम जगदीश एतरा

चुप ना जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण न है जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टै संसार, जिस हाथ जोर।

ज्ञान खंड मैं है ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाटत घड़िए बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा के सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिन मह राम रहया परपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे।

काल तिथ खंड मंडल वर पांड जे को कथ तयंत नयंत तिथ लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार विख बिगसै कर विचार नानक कथन करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अरुण मत विद हथियार पौ खलायगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल करिय शब्द।

जलन बुझे शीतल होए मनवा सतगुर का दर्शन पाए जीव। आपा गुरु की अमृत बाणी की महिमा करन दा निमाणा जिहा जतन करिए। बेशक रब दे प्यारे संतां दे वी दिहाड़े मनाए जा रहे ने, पर ओ जड़े महात्मा संत ने महापुरख ने उन्हां ने भी टेक तां केवल बाणी दी लई है। जे बाणी है तां ओ संत महात्मा रब दे प्यारे ने, बाणी करके ही सब कुछ प्राप्ति है। जिथे महाराज ने इस बाणी नूं अमृत बाणी आखिया जे, उत्थे साहिब जी कहिंदे जड़े रब्बी बाणी पढ़नगे ना जां अमृत बाणी नूं सरवण करनगे खालसा जी, उन्हां दे दुख रोग संताप सारे ही लै जाने ने, उतर जाने ने। जिन्हां नूं बोल आउंदे ने नाल बेशक पढ़ लिया करो। धन गुरु अमरदास महाराज जी दे अमृत वचन ने दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी। जेडे सची बाणी अमृत बाणी नूं सुणदे ने, धन गुरु अमरदास महाराज जी कृपा करदे दुख रोग संताप कलेश झगड़े सारे दे सारे खत्म हो जांदे ने। जिवें जिवें खालसा जी गुरु का सिख अमृत बाणी सरवण करदा, तिवें तिवें उहनूं आनंद दी प्राप्ति हुंदी है, क्योंकि बाणी गुरु है। गुरु नूं मिलन करके आनंद मिलदा है। सतगुरु जी दे अमृत वचन ने मन रे सदा आनंद गुण गाए, सच्ची बाणी हर पाई है हर स्यो रह सवाए। कहिंदे जे हरि परमात्मा नूं पाउणा है ना, प्राप्ति करनी है, तां फिर गुरु की अमृत बाणी जो गुरु रूप है, धुर की बाणी अमृत बाणी है, उस नूं प्यार विच सुण।

गुरु प्यारी साध संगत सारे गुरमुख माई भाई साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में बिरतियां जोड़ लीए लै जाओ अपनियां बिरतियां हरिमंदर साहब जिथे इस समय पहला प्रकाश होना है। अज संपूर्णता होई है साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की। आओ सारे रल के सतगुर की बाणी का उपदेश अपने हिरदे च वसाउणा करिए। वडभागी हो सारे जिन्हां नूं गुरु दरबार विच बहन का सुभाग सतगुरु ने बख्शिया। ये घड़ियां ये समा ये सुभागा समा सतगुरु की बख्शिश नाल प्राप्त हुंदा है। वधाई दे पात्र हन सारी प्रबंधक कमेटी जो उपराला करके गुरु के संगतां नूं गुरु चरणा विच सद के बिठा के गुरु दरबार विच सत्संग दीआं शबरां ला के जोड़दे हन। आप भी संगतां धन हो जिहड़े अपना समा कीमती गुरु चरणा विच आ के बिताउंदे हो। महापुरश वचन करिया करदे सन जिहड़ा समा गुरु दे चरणा विच बैठ के बीत गया उस तो कई गुना वध समा दुखां दा बच जांदा है। दुखां कलेशां तो बंदा छुटकारा पा लैंदा है। साहिब बाणी विच लिखदे हन साई घड़ी सुलखनी सिमरत हर नाम। सो आओ सारे जुड़िए गुरबाणी दे शब्द नाल ते करो कृपा नाले सरवन करो नाले गायन भी करो।

प्यारी साध संगत, आज संगत ने हुक्म किया है कि भाई गुरदास जी का वो शब्द भी सुना जिदे विच भाई साहब तुहाड़िया गुरु प्यारियां संगतां नूं संबोधन करके वचन करते हैं कि गुरु प्यारियो जो तुसी गुरु दरबार विच जांदे हो जिहड़े आपने पैरां दे विच मौजे पाए हैं जुत्ते पाए हैं वो उतार दिओ। फिर पुछया महाराज की करिए, आख्या मेरे तन की चमड़ी दे मौजे बना के अपने चरणों में पा लो। कादे वास्ते? कहन लगे जदों तुसी मेरे शरीर की चमड़ी दे मौजे बना के अपने चरणों में पाओगे उहदे सदके गुरु दरबार की चरण धूड़ मेरे तन नू मेरे मस्तक नू लगेगी ते मेरे भाग मेरे जन्म सफले हो जाएंगे। आओ सारे सरवण करो, सारे नाल रल के गायन भी करो।

पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी।